0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

ग्रोवर्स, विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: Hey man, Sadbir Ojala, Geet MP3.
1: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है, मोना डार्लिंग।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian radio station.
0: Lade fere,
3: Hanji Hanji, yo hai Hanji Hanji,
4: Hanji Radio.
5: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: डॉक्टर नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: ने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: हेलो मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
3: देखो सच बता दो
4: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्ची कुछ नहीं पता
2: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: जवाब हमेशा

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: जो हुक्म मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ने दीवार है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
3: देखो सच बता दो
4: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनु सच्ची कुछ नहीं पता
2: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधू पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला
2: देखो सच बता दो
3: मैं झूठ नहीं बोल रही मेनू सच्ची कुछ नहीं पता
1: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 16748।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: हां जी रेडियो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: हाँ जी 1674

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज इमरान हाशमी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो हाजी

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: हाँ जी मैं हूँ इका और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो हाँ जी 1674 AM बेबी।
3: हाँ जी मैं तो अपना गैरी संधू सो ड्राइवर का मुंडा पेंट रोड़का गला उस समय की गल कर लगा जब मैं कनेडा में पहली बार गया मेरा फ्रेंड मैं कैक्टस क्लब ले गया उसे मेरे वर्गा देसी बलैदन बीबी तो स्नैपचैट आई डी मंगता सी मैं गाना

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: मोटे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला, दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू, पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।

0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। जरा हौली

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing. Very B Toyota, the smart choice. Bro, he always hit. Yeah, dog, you're killing the game. Oh,

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Hanji 1674 AM.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: जब चाहे तब।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: Hi, this is Salman Khan, and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan, and you're listening to Radio Hanji.
1: आज प्यार की हो डील
2: डील बोले तो
3: हार्ट हार्ट
4: हमारा यार सौदा सौदा
2: ओहो
1: दोनों डील करा से

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

ग्रोवर्स, वी ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
0: लादे फिर
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: यार तू इतनी इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: रेडियो हाँ जी 1674 में दोस्तों समा हो चुका डॉक्टर संदीप भगतुरान दे नाल गल करन दा। जानदे आं अज दे दिन साडी सेहत संबंधी केड़ियां ने जानकारियां, जेकर तुहाडा कोई सवाल होवे ते इस कन्वर्सेशन दे दरमियान तुसी सानू फेसबुक पेज दे उत्ते जां व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज कर सकदे हो ताकि आपां डॉक्टर साहब अगे ओह सवाल रख सकीए। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, तुसी आउणे हो, स्वागत तुहाडा रेडियो हाँ जी दे।
7: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्नवाद। पिछले कुछ महीनों तो न्यूज़ च खांसी जुकाम दा वायरस RSV वायरस की काफ़ी न्यूज़ आती रही है, तो ये बड़ा पुराना वायरस है जिदे नाल आम तौर पर बच्चों खास तौर पर 5 साल की उम्र तो घट वाले नाल ये वायरस सिर्फ नक् जुकाम नहीं करता सी, फेफड़ियां च भी वड़ जाता सी, जिस करके छोटे बच्चों के एयरवे छोटे होने करके सारी बहुत तंगी आती सी, तो वो करके ये काफ़ी सीरीयस मनिया जाता बच्चों च। पर कुछ पिछले साल ये देखने आया सी कि सिर्फ बच्चों च ही नहीं है वड्यां च भी होने लग पिया सी, तो उस करके इहदे लई वैक्सीनेशन तैयार की और सरकार ने लास्ट वीकेंड 19 तरीक नूं अनाउंस किया कि प्रैगनेंसी दे विच यानी प्रैगनेंट मदर्स नूं ये वैक्सीन फ्री दिता जाएगा, अदरवाइज कॉस्टली हुंदा सी। सो ये न्यूज़ मैं शेयर कर रहा कि ये वाली वैक्सीनेशन उपलब्ध होएगी और इहदा फायदा ये है कि मदर नूं भी ऑब्वियसली अपनी इम्यूनिटी मिल रही है और अपने खून दे नाल अगे बच्चे नूं भी इम्यूनिटी बन रही है। तो पहले खास तौर पर पहले कुछ महीनों च 12 महीने की घाटे इस तो अगर इनफेक्शन होंदा तो बच्चे नूं साह लैण च इन्नी तंगी आती कि आम तौर पर ICU च जाण दा काफ़ी रिस्क रहिंदा। तो ये अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने पिछले शनिवार कि ये कोई नवा वायरस है, नहीं ये नवा नहीं है, लेकिन यदि वैक्सीनेशन फ्री फंड हो रही है गवर्नमेंट वालों प्रेगनेंट वूमन लई और ये कदों कलवानी चाहिए है 28 to 32 हफ्ते की प्रैगनेंसी के जरा रिकमेंडेड पीरियड है क्योंकि उही टाइम है जदों काली खंघ का टीका भी लगाया जाता है। सेम रीजनस ने कि काली खांसी भी अगर बच्चों च होंगी है नवे जम नवजात च तो साह की काफ़ी तंगी आ सकती है, सो इसलिए दो चीज़ा, एक वायरल है RSV वायरस ते दूसरी काली खंघ जिहड़ी आम तौर पर बैक्टीरिया नाल हुंदी है, दोवां नूं हुण जिहड़ी प्रोटैक्शन असीं वैक्सीनेशन दे दौरान प्रैगनेंट मदर च कर सकदे हां तां जो बच्चे लई अगे ज्यादा तंगी ना होवे। तो ये न्यूज़ सी जी मैं शेयर करनी चाहुंदा सी सुनन वाले नाल।
6: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसीं गर्भवती औरतों की तुसीं गल कीती है ते बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां ध्यान दे विच रखण वाली होंदियां ते बहुत सारे जिहड़े सलाह मशवरे आ उह वी इधरों उधरों औरतों नूं मिल जांदे आ, कई वारी उह काफ़ी इस चीज़ नूं लैके ते दुचित्ती दे विच पै जांदे ने। सो उस लिहाज दे नाल जेकर आपां वेखीए ते किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां सानूं फॉलो करनियां ही चाहीदियां ने जां की आसान तरीका वा इस छुपाई तों बचण दा?
7: हाँ जी, एक तो असी इनफॉर्मेशन कित्थों लै रहे हैं जे सानू कई बार कन्फ्यूजन हो रही है इनफॉर्मेशन दी, तो तुहाडा GP तुहाडा बेस्ट सोर्स हुंदा एंटीनेटल केयर दे दौरान जित्थों भी तुसी जा रहे हो वो तुहानूं जिहड़ी इनफॉर्मेशन है वो एविडेंस बेस्ड है यानी नाप तोल के सही तुहानूं ऑफर कीती जा रही है। दूसरी चीज है कि कल्ला सारी जिम्मेदारी प्रेगनेंट मदर ते नहीं है, गर्भवती मदर ते नहीं है बल्कि परिवार ते भी है। वो किस तरह, क्योंकि जेडे आले दुआले कई बार बजुर्ग ने या साडी अपनी वैक्सीनेशन जेडी है आउट ऑफ डेट है, हुण जिदा काली खंघ दे टीके दी गल करिए ते रिकमेंडेड है कि पिछले 10 साल च लग्या होना चाहिए क्योंकि ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
6: ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ।
7: ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈ ਨੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੋਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਕਿਨ ਯਾਨੀ ਮਿਕੋਜ਼ਾ ਡਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਜੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈ ਨੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪਰੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੇਲਾਈਨ ਦਾ ਸਪਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨੱਕ 'ਚ, ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
6: ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ,
7: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
6: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਭਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1674 AM।

0: और क्यों एक मूड ते आके मैनूं लगदा है कि तेरी होंद नूं बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनूं दुनिया दे नज़ारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।
1: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. Sunte rahiye, sunate rahiye, bajate rahiye, jo karna hai kariye.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी

0: जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल
1: अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया
0: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम अठ बाई श्लोक
1: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
1: सगल समिग्री कट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे
0: नौनद अमृत पव का नाम देही में इसका विश्राम
1: सुन समाद अनहत तै नाद कहन न जाई अचार्य विस्माद
0: इन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिसन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहे आप भगवंत
0: करण माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड तै दिसै समाहे
1: तिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सुमृत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
1: वाणी प्रभु की सब को बोले आप अडूल न कबहू डूले
0: सर्व करा कर खेले खेल मोल न पाई है गुणे अमोल
1: सर्व जोत मह जाकी जो धार रहे हो स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं एहो विशास
1: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन
1: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
0: जो जो हुए सो इश्क मान करण कराम हर प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सामोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभते सगली उत्पत
1: तिस पावे ता करे विस्थार तिस पावे ता एकंकार
0: अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर
0: अंतर गज से आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए
1: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मदल पत्तो रह जो कुछ कहना सो आप ही कह
1: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता ले समाए
0: इसते हुए सुना ही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
1: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
1: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
0: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
1: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए
0: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस भगवान
1: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
0: जा नामन कहे सुआओ जन कह संचित आवे नाओ
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
0: सुख मनि सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
1: पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
0: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
1: सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
0: त्यागो तरंग संत जना की दूर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो साध संग आगन सागर तरहो
0: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
0: नरक निवार उर्धारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साल के बचन अमोलीक लाल यह रत्न
1: संत कमावत हो तो दार आप तरह लोक कह निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उतरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न पए गुरदे पूर्ण हुई सेवक की सेव
0: आल जंजाल बिकार तेरे ते राम नाम सुरस न कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेप हमारी
0: उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस है सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते उच पाए स्थान बहर न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टि
1: फल तिस जान कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
0: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैं ताकि गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
0: सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
0: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत
0: मरणता का दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै
1: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से बै परम साध नाम निर्मलता के करम
1: सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते उचता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबीस

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। आपके हम हर बार बताते हैं कि इतने सारे ईमेल्स आते हैं, फोन कॉल आते हैं, और आज इसीलिए हमने तय किया है कि कुछ ऐसे सवाल जो बहुत से दर्शकों के होते हैं और बहुत सारा उसमें ही जवाब मिल सकता है, उन्हें हम चुने और अपने प्रोग्राम में शामिल करें और इन सवालों का जवाब साथ मिलकर तलाशेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ हमारे हम सफर है ब्रह्मा कुमारी से शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: शिवानी, इतने सारे सवाल और इतने सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के सवाल होते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं हम कि मिलते जुलते सवाल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी वही है, मुश्किलें वही हैं, अड़चने वही हैं, स्ट्रेस उतना ही है, एंगर है, बाकी सारी और चीजें हैं। एक सवाल जो यहाँ पे इन्होंने भेजा है, मुंबई से आया है और विनय जी ने ये लिखा है, मेल भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मैरिड मैन और मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर बार मुझे ये लगता है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मुझ पर बहुत शक करती है। मैं उन्हें इतनी बार समझाने के बाद भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कहीं कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आई डू केयर फॉर हर एंड हो ये रहा है कि धीरे धीरे मैं इरिटेट होने लग गया हूँ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ से भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है और आप शायद उन्हें कुछ समझा पाएं, और मैं चाहूंगा कि आप बात करें।
1: वेरी टिपिकल प्रॉब्लम आजकल, क्योंकि जहां दोनों वर्किंग हो गए और दोनों बहुत सारा समय बाहर बिताने लगे, तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम क्रीप अप होने लग गई, क्योंकि हम परिवार के साथ कम समय
0: और बाहर ज्यादा
1: समय बिताने लगे। और एक नॉर्मल भी होता गया कि जहां हम बाहर इतना समय बिताएंगे तो वी विल हैव अ क्लोज फ्रेंड सर्कल देयर, वी विल हैव पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस, बट नाउ इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हमारे जो क्लोज परिवार के जो संबंध है वो और भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस होते जाएं। तो कहीं ना कहीं इस केस में एक तो जिन्होंने ईमेल लिखा विनय जी ने, ही ऑल्सो हैज टू डू अ लिटिल वर्क, बिकॉज मे भी उन्हें लग रहा है कि सारा काम
0: कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी।
1: क्योंकि ये क्वेश्चन भी जिस तरह से भेजा कि आप मेरी वाइफ को ये समझाइए, तो लेकिन हमारा तो हमेशा मोटो यही रहता था, वी कांट चेंज अदर पीपल, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे थिंग्स विल बिकम इजी फॉर हर। मे बी शी डजेंट हैव टू मच ऑफ अ डाउट, मे बी आई एम फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज कई बार हो सकता है कि अगर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या छोटा छोटा जो समटाइम्स मे बी जस्ट आउट ऑफ यू नो कि जैसे इकट्ठे रहते हैं, तो इट्स गुड टू नो अबाउट ईच अदर, इट्स गुड टू नो कि हम एक क्या कर रहे हैं सारा दिन में। लेकिन जब और किसी की नेचर ज्यादा पूछने की होती है कि मुझे पता रहे कि आप सारा दिन कहाँ पर हैं, लेकिन कई बार जब हम बार बार उस तरह का पूछते हैं तो जिससे वो सवाल किए जाते हैं उसको लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत डीप रूटेड ये संस्कार बन गया है डाउट करने का। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, वाइफ डाउट कर रही है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हस्बैंड डेफिनेटली डाउट कर रहे हैं कि ये मुझसे
0: क्राउड कर रही है।
1: यू नो, ये एक एनर्जी है जो क्रिएट हो जाती है, तो मे बी इफ शी हैज नॉट सेड इट डायरेक्टली, तो मे बी डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर, मे बी बिकॉज क्या होता है, जिस वायुमंडल में हम आज हैं, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं हमारे को ये बातें बहुत कॉमन सुनने में मिलती है। दीज हैव बिकम द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन एवरीवेयर के हस्बैंड का कुछ और,
0: वाइफ, इट इरिटेट्स मी सो मच, मुझे कंटिन्यूस इरिटेशन रहती है, मुझे गुस्सा चढ़ने लगता है, मैं उसे चुप हो जाता हूँ, बात नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू।
1: अब हम जब बात करना बंद कर देंगे तो
0: पनिशमेंट वाला जो फैक्टर
1: है कि एक तो दूसरे को दर्द मिलेगा। अब अगर सपोज एक तो है कि पता, आई हैव टू मेक श्योर कि वाइफ डाउट कर रही है या नहीं। नाउ अगर कर रही है, हाउ डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शब्दों से नहीं होगी। उन्होंने कहा मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे से वो सही एनर्जी नहीं पहुंच रही,
0: बार मिलानी पड़ेगी आपको।
1: तो अब जो हम कर रहे हैं वो और ही दूरी ला रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम इरिटेट हो रहे हैं, कि हम बात करना ही बंद कर देते हैं। अब अगर हम बात करना ही बंद कर देंगे तो डाउट और भी
0: ज्यादा
1: बढ़ता जाएगा। नाउ इफ आई लुक एट हर विद कंपैशन, राइट नाउ आई एम लुकिंग एट हर विद एंगर कि ये क्यों डाउट कर रहे हैं।
0: मेबी यू नो अगेन दिस थिंग कम्स यहाँ पे शिवानी की, शायद वो अगर डाउट कर रही हैं तो वो पेन में है।
1: वो पेन में तो है ही,
0: बिल्कुल
1: बहुत दर्द में है। आप इमेजिन करो ना, दो क्षण के लिए अपने आप को वाइफ की स्थिति में रख के देखो, वो कितने दर्द में है। अब इस दर्द में क्या मैं उसको और दर्द दूं? यही तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हमें हो रहा था गुस्सा, क्यों डाउट कर रही है, जबकि मैं सिंसियर हूं तो क्यों डाउट कर रहे हैं मेरे पर। टू बी सेंट एंगर, एंड एंगर जैसे इन्होंने कहा व्यवहार में भी आने लग गया, थॉट्स में भी नहीं। तो आई हैव टू फील कंपैशन, क्योंकि डाउट कर रही है, मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच टर्मोइल। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है इसको हमें चेंज करना होगा। तो स्टार्ट गिविंग हर मोर पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी, कि मे बी बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कहीं से मिले होगी, या फ्रेंड्स बहुत ज्यादा उस तरह की बात करते हैं, या उनको अपने ऑफिस में कई ऐसे लोग दिखाई देते होंगे जिन्होंने इस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो डाउट बैठ गया। मुझे उस डाउट को फिनिश करने के लिए और भी प्योरिटी और भी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, इफ दैट रिलेशनशिप मैटर्स टू मी। सी दैट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर रिलेशनशिप मैटर करता है देन इट इज नॉट अबाउट ईगो कि आप गलत हैं, आप मुझ पर कैसे ये डाउट कर सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, इस समय ये रिलेशनशिप में दर्द है, मुझे इस दर्द को हील करना है, क्योंकि सामने वाले के अंदर तो इस टाइम ताकत ही नहीं है।
0: डेफिनेटली, बिकॉज ही सेज मैं हर्ट हो रहा हूँ। सो अगेन हमने बात ये की थी कि हर्ट कोई और नहीं कर सकता हमें, हम खुद कर सकते हैं।
1: तो अगर कोई डाउट भी कर रहा है, लेकिन अगर मैं सिंसियर हूं तो मुझे क्यों हर्ट होना चाहिए? मुझे हर्ट इस बात से होता है कि तुमने मुझे डाउट किया कैसे। यू सी दैट्स ईगो, that's where it gets hurt. But if I understand from her perspective, I will see it's okay. Accept, it's understandable. और जितनी जल्दी हम उसको heal कर देंगे उतनी जल्दी वो trust बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। हमें लगता है इसने डाउट कर दिया तो इसका मतलब कोई ट्रस्ट
0: हो गया, वो लड़ाई होती है। बहुत सुंदर विनय जी यही कहना चाहेंगे कि प्यार अगर आप करते हैं सचमुच, इफ यू
1: रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए मेरे लिए।
0: अगर वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए और यू रियली लव योर वाइफ, देन एक्सेप्ट हर। दिस इज व्हाट वी सेड, लविंग समबडी मीन्स एक्सेप्टिंग। और अगर आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
1: जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ में से किसी एक को कोई बीमारी लग जाती है, इट कुड बी एन एक्सीडेंट जिसमें आप फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं, या आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है जो ठीक नहीं होती है। हमें बहुत तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं दूसरे मेंबर से। मेजोरिटी तो होना चाहिए या होता है कि स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और विद योर फिजिकल हैंडीकैप ऑल्सो आई एक्सेप्ट यू। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप पहले तो ठीक थे लेकिन अब आपका ये हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। नो, विद द फिजिकल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो विद अ लिटिल इमोशनल हैंडीकैप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा सा हैंडीकैप आ गया, थोड़ी सी चोट लगी है बीच में, तो क्या हम रिजेक्ट कर देंगे? जिसको चोट लगी है उसको ही डांटना शुरू कर देंगे? सिर्फ ये है कि फिजिकल एलिमेंट और फिजिकल हैंडीकैप देखना बहुत इजी लगता है, इट्स इजी, लेकिन इमोशनल एलिमेंट देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद ही चोट में बैठ जाते हैं।
0: और इमोशनल एलिमेंट में हम दूसरे को दोष देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू नो, सी वी डोंट टेक इट एज एन एलिमेंट, वी से यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन,
1: रिस्पॉन्सिबल, एंड नाउ यू हैव हर्ट मी, सो नाउ आई हैव द राइट टू हर्ट यू। तो आपने मुझे डाउट किया,
0: इमोशनल एलिमेंट एक्चुअली,
1: यही तो हो रहा है ना। तो वही तो बात हुई थी कि आप भी दर्द में तो मैं भी दर्द में, तो आपने मुझे डाउट किया तो अब मैं आपको गुस्सा करूंगा, तो क्या हुआ? आप भी दर्द में, मैं भी दर्द में।
0: वंडरफुल, दैट्स एक्चुअली अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। और कहीं ना कहीं आप शायद विनय जी उम्मीद ये कर रहे थे कि हम आपकी वाइफ से बात करना चाहेंगे, लेकिन जरूरी यही है कि बदलना हमें खुद को होगा।
1: हाँ, और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम को नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग जस्ट व्हाइल वी वर डिस्कसिंग कि ये हर प्रॉब्लम जो हमारी फैमिली में या हमारी कोलीग्स के साथ आ जाता, लुक एट इट एज अ हैंडीकैप, लुक एट इट एज एन इलनेस, डू नॉट लुक एट इट ये तो है ही ऐसे। मतलब हमें ये समझना होगा जानबूझकर कोई कुछ नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं वाइफ के अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि वो अपने हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रही है, मेजर इनसिक्योरिटी है अंदर, इस कारण से उसको लग रहा है कि आप बाहर किसी और के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं,
0: कम है, बहुत कम।
1: इतनी कमजोर आत्मा के ऊपर अब और क्या गुस्सा करना, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट.
0: वही होता है कि हम भी उतने ही कमजोर होते हैं, और वो जब दो कमजोर आत्माएं साथ होती हैं तो फिर परमात्मा,
1: व्हाट इट्स ऑल बिकम अबाउट अंडरस्टैंडिंग. जब हम अपने आप को समझ लेंगे तो हमें औरों को भी अंडरस्टैंड करना इजी
0: हो जाएगा. वेरी ब्यूटिफुल सिस्टर शिवानी. और अब एक और मेल हम लेते हैं यहाँ पर. ये एक बच्चे का मेल है और मजे की बात यह है कि इस प्रोग्राम के दौरान हमें इतने स्टूडेंट्स के और यूथ के मेल आए हैं जो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करते हैं जो उन्हें लगता है कि कहीं नहीं कर पाते. एंड दिस इज अ गर्ल हु इज 14 ईयर ओल्ड. शी सेज माय मदर इज वेरी ब्यूटिफुल. Till some time, I had a lot of confidence on her. I was very proud of her. वो एक working woman है और मेरी उनके साथ बहुत अच्छा relationship था. लेकिन धीरे धीरे अब मैं ये देखती हूँ, I have started hating her. Why? Because I find her much more beautiful than me. और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. और मैं मैंने ये देखा, अपनी friend से भी बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बहुत दूर चली गई हूँ. This is a child talking.
1: It just shows कि हमारी insecurity किस level तक पहुँच गई है. पहले ये होता कि अगर मेरे friends मेरे से ज्यादा beautiful है या मेरी sister या brother मेरे से ज्यादा attractive है तो हमें insecurity की feeling आती. लेकिन parents के साथ इस तरह की चीज feel करना, पहली बात तो हमने यही समझा कि beautiful actually मतलब क्या है, है ना. अभी ये क्यों ये इनसिक्योरिटी आ रही है? इट कुड बी विद मदर, इट कुड बी विद एनीबडी एल्स, इट कुड बी विद फ्रेंड्स. इट इज बिकॉज जो ज्यादा सुंदर है फिजिकली, हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी. और उसको औरों से ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती और मुझे नहीं मिलती है तो मेरी सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है. क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम इस पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. एंड आई बिलीव कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटिफुल, या आई बिलीव कि आप सोचते हैं कि शी इज मोर ब्यूटिफुल देन मी, सो आई स्टार्ट फीलिंग यू लाइक हर मोर देन मी. एंड ये मेरे लिए बहुत डैमेजिंग हो जाता है क्योंकि मैंने सारा कुछ इस बिलीफ पर बेस कर दिया कि फिजिकल लुक्स एक्सेप्टेंस लाते हैं, फिजिकल लुक्स पे मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है और लोगों की अप्रिसिएशन मेरी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है. अब क्या होता होगा मे बी कि जहां भी मदर एंड डॉटर इकट्ठे जाते हैं, इफ शी फील्स कि फिजिकली मदर उससे ज्यादा सुंदर है, शी मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग कि मदर को ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. और जहां ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. अब ये समझने की बात होगी कि इट्स नॉट एक्चुअली फिजिकल ब्यूटी. किसी को भी आप सिर्फ एक दो मिनट के लिए फिजिकल ब्यूटी पर आप इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन जहां तक कि लोगों की हमारे प्रति एक्सेप्टेंस या हमारे तरफ अट्रैक्ट होने की जो बात आती, इट्स मोर ऑन माय एनर्जी लेवल. सो एंड इन योर मदर, आई मीन यू कैन नेवर कम्पीट विद अ मदर.
0: नो बट देन आई कैन अंडरस्टैंड, शी इज याना फ्रॉम राजस्थान एंड शी इज सो हर्ट. मतलब आप एंगर और हर्ट से जुड़ा हुआ कि शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड नाउ आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक टू हर.
1: हाँ, लेकिन इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये प्रॉब्लम तो खुद की क्रिएट की हुई है. एंड वन थॉट एंड वो फिनिश हो जाएगी.
0: ज्यादा टीनेजर्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं,
1: क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत लो है इस टाइम. और सेल्फ एस्टीम सारा फिजिकल पर बहुत ज्यादा आधारित है. एंड सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंडेंट है कि कितने लोग
0: मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे अटेंशन कितना दे रहे हैं. मैं जहां जाती हूँ मुझे देखते हैं कि
1: सेल्फ इतना वैक्यूम में है कि मुझे औरों की अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि पहली बात, मेरी सेल्फ एस्टीम के लिए मुझे औरों से अटेंशन नहीं चाहिए. और दूसरी बात, दूसरे लोग भी अगर आपको चाहिए एक्सेप्टेंस, देन इट्स नॉट फिजिकल ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी. सो डोंट थिंक टू मच अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट. अपने इनर सेल्फ पर काम करना शुरू करें. मे बी इट्स पॉसिबल दैट फिजिकली तो आपकी मदर अट्रैक्टिव है ही है, लेकिन इट्स ऑल्सो दैट शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन,
0: है
1: ना. तो शी सच अ ब्यूटिफुल पर्सन, तो उनके अंदर से वो पॉजिटिविटी जो रेडिएट होती है उसके प्रति लोगों का आकर्षण होता. और इसको देख देख के मैंने अपने अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, वो नेगेटिव ऑरा मेरे अराउंड है, उसकी वजह से लोग मेरे से
0: दूर होते जाएंगे
1: और भी दूर हो जाएंगे. क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वॉक इन करता, यू कैन फील द एनर्जी. आप फील कर सकते हैं कि कितना फियर है, कितनी इनसिक्योरिटी है. तो नथिंग अबाउट द फिजिकल लुक, लेकिन लोग वैसे ही दूर हो जाएंगे बिकॉज आई एम कैरिंग अ वेरी नेगेटिव ऑरा. तो आई विल हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल लुक्स. वो आधारित है कि हमारा ऑरा क्या है. जैसे ही हम किसी भी कमरे में प्रवेश करते, हमारे साथ साथ हमारी एनर्जी फील्ड एंटर करती है एंड वो एनर्जी फील्ड डिसाइड करती है कि और लोग मेरी एनर्जी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं या मुझसे दूर होना चाहते हैं. तो उस पर वर्क करें एंड यू विल हैव एवरीवन विद यू.
0: एंड समवेयर आई थिंक शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मदर एज वेल. यू नो
1: मदर इज ऑलरेडी अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इंटरनली ऑल्सो. इट्स अंडरस्टैंडेबल एंड शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी शुड लाइक द आइडिया दैट हर मदर इज सो ब्यूटीफुल.
0: सो इट्स लाइक
1: एक थॉट है कि यू नो इनसिक्योरिटी किस बात की. कुछ भी नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए हो रहा होगा क्योंकि उनको जब वो दोनों कच्चे होंगे
0: और कितना बिल्डअप कर लेते हैं इतना हर्ट में रह के कंटिन्यूअसली. यानी आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुख दे रही हैं कहीं ना.
1: और ये आज आप अपनी मदर के साथ एक्सपीरियंस करें, कल आप औरों के साथ भी करेंगे. तो इसको अगर बिलीफ
0: को
1: यहाँ ही नहीं ठीक कर दिया तो ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी और रिलेशनशिप्स में. और अगर मेरा मदर डॉटर रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो मैं अपने आगे की रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग नहीं बना सकूंगी. मेरे हर रिलेशनशिप में मुझे कहीं ना कहीं एक हीनता की भावना, एक भय और एक इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी. मुझे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उनसे डर है, उनसे खतरा है. तो मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी और ये मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी. आई हैव टू रिमेम्बर ये औरों की वजह से नहीं है.
0: जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी. आप आज बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत करके हमें लिखा है. इट्स अ बिग स्टेप. अगला स्टेप ये है कि आप जिम्मेदारी उठाइए आप अपने जिस भी जो भी आप फील कर रही हैं. और फिर एक थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे.
1: इस केस में तो वो रियलाइज भी कर रही होंगी कि मदर की कोई गलती तो है ही नहीं है. इट्स जस्ट दैट उनको ये लग रहा होगा मुझे ऐसी थॉट्स आई क्यों रही है. तो कुछ नहीं, स्टॉप, इंट्रोस्पेक्ट और अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर दे, वो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दे और अपने आप.
0: एंड ऑलवेज बिलीव दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर दैट ब्यूटीफुल सोल एक्चुअली. शिवानी एक और सवाल है जो बहुत से दर्शकों का सवाल से जुड़ता है और ये है विदेश शर्मा जी हैं. ये इन्होंने हैदराबाद से लिखा है. ही इज अ रिटायर्ड जज एंड ही सेज आई हैव गॉट टू सन्स. बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बच्चे हैं दोनों. एक अमेरिका में है और एक बैंगलोर में है. मैं और मेरी वाइफ एक बहुत अच्छा जीवन गुजार रहे हैं लेकिन अब मैं 65 के करीब हूँ, ज्यादा हूँ. मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ. मेरा मन ये करता है कि बाकी लोग भी देखें, बहुत अच्छा लगता है. पर मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को कभी भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आने दिया था. जब वो छोटे थे तब मैं इतना बिजी था अपने प्रोफेशन में और वाइफ के साथ जो था वो भी एक दूरी बनी रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा. अब इतनी लोनलीनेस में फील करता हूँ, ना बच्चों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ ना वाइफ के साथ रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको. और वाइफ ने अपना सर्कल बना रखा है, मेरे पास ना मैं कह पाता हूँ अपने बच्चों से कि मैं लोनली हूँ क्योंकि मुझे अब प्रोग्राम भी देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मैंने भी उन्हें लोनलीनेस कहीं दी है. और ना मैं वाइफ के साथ जो है अपना रिलेशनशिप दोबारा, मतलब मुझे पता ही नहीं कि कम्युनिकेट कैसे करूँ मैं. एंड देयर इज दिस लोनलीनेस व्हिच इज सीपिंग इन. सो आई वांट टू शेयर इट विद यू.
1: ट्रू. नाउ ये बहुत अच्छा है कि ये एक रियलाइजेशन आ गई है. और कहीं ना कहीं और भी एक बात जो बहुत अच्छी है वो है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है उसकी. यू नो ये एक फर्स्ट स्टेप है जो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया.
0: आई थिंक ही सेड बिकॉज़ ऑफ द यू नो प्रोग्राम आई हैव बीन सीइंग आई एम रियलाइजिंग दैट
1: बिकॉज़ यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ. तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टेप होता है क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हमारा दृष्टिकोण नहीं तो सिर्फ औरों की तरफ होता. तो ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट किया था. अब ये भी समझना होगा कि ये एकदम से एक दिन में दूसरे नहीं चेंज होंगे. हाँ मैं चेंज हो सकता हूँ लेकिन औरों को और लोग भी क्योंकि है तो फैमिली तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. ये तो बहुत नजदीक के संबंध है. ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं करना चाहते होंगे. इट्स जस्ट दैट उनको तो इसी व्यवहार की आदत पड़ी है ना. बहुत समय से।
0: अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला कि आप बदल गए, यू नो हमने कहा था एक बार पहले।
1: क्यों? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में तो पुराना वाला पास्ट एक्सपीरियंस से ही चल रहा है, क्योंकि लेबलिंग ये होता है वो ब्लॉकर बिलीफ, यू नो जो हमने सोच देखा था कि किसी को भी हम एक लेबल लगा देते हैं कि ये तो ऐसे है। हाँ। अब क्या होगा, वाइफ बच्चे सभी एक साइड पर, जैसे कि एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये हमारे फादर ये तो है ही ऐसे। नाउ इट विल नीड टाइम फॉर देम फॉर दैट बिलीफ सिस्टम टू चेंज। तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए मुझे ही वो एनर्जी भेजनी पड़ेगी। अगर तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने बहुत समय से एक ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन शायद की नहीं, तो बहुत इजी नहीं होगा बताना कि यू नो आई एम रियलाइजिंग। क्योंकि इजीएस्ट वे तो अदरवाइज ये है, जस्ट गो एंड शेयर आई हैव रियलाइज्ड। लेकिन हमारे ईगो हमें ये सब करने से रोक देती है। सिंपल, बहुत सिंपल होगा अगर यू कैन वॉक अप टू ऑल थ्री एंड टेल देम आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने अपनी पूरी जीवन क्या किया है, बट नाउ I have realized and so I have changed. You know, not even wanting. I have changed. And कुछ उसके बाद बोलना नहीं है कि मुझे ये करना है या मुझे वो relationship build होना है। वो एक barrier है जो मैंने ही रखा था बीच में। अब मुझे जाकर सिर्फ उस barrier को हटाना है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही ready थे। तो उन्हें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो या तो मैं एनर्जी से उस बैरियर को हटाऊं, और अगर मेरे अंदर वो ह्यूमिलिटी है तो अगर मैं सीधा वो मैसेज कन्वे कर देता हूं तो वो बैरियर एक क्षण में फिनिश हो जाएगा। एंड इतना ब्यूटीफुल ये रिलेशनशिप होता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ हमने पकड़ के रखा है कि हम दूर हैं, हम दूर हैं। दूर मतलब क्या? रिलेशनशिप है क्या? एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। बहुत समय से हमने एक्सचेंज किया ही नहीं, हम अलग अलग होके बैठे थे, बीच में एक वॉल था। आज वो वॉल हट गया, क्या होगा? एनर्जी फ्लो बिगिंस। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट। इसमें कोई पुरुषार्थ तो इनको करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट बिगिन। एंड अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत समय से कम्युनिकेट नहीं किया, अगेन बिगिन,
0: स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। एक्चुअली अगर आप ये नहीं भी कहना चाहते कि जैसे आपने कहा कि ईगो आ जाती है कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने जिंदगी भर क्या किया, तो आई थिंक एक बार कॉन्वर्जेशन कहीं पर भी कहीं से भी शुरू हो जाएगी।
1: कन्वे कर देंगे ना अपने थॉट पैटर्न और अपने बिहेवियर से हम वो मैसेज कन्वे कर देंगे। और एक्चुअली जैसे ही आपकी थॉट चेंज होती है, सामने वाले को वो वाइब मिल जाता है।
0: इतना इजी होता है, इट्स जस्ट वन थॉट। एक्चुअल इन्होंने कितना बड़ा हमने बनाए हुए होती है वो चीज कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
1: उनको वो वाइब मिल जाएगा एंड इमेजिन दे आर तो एनी वेज वेटिंग, वो तो वेट कर रहे हैं। तो उनसे ज्यादा इस बात को लेकर और शायद कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती है।
0: बिल्कुल। एंड मे बी यू नो कहीं इनको ये भी हो सकता है, इनको ये एक रिजेक्शन का डर भी लग रहा हो शायद कहीं कि क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया है
1: वही इनसिक्योरिटी है। लेकिन यही याद रखना होगा कि जब हम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, देयर इज नो वे कि हमें रिटर्न में नेगेटिव मिलेगा। हो सकता है थोड़ा एप्रिहेंशन हो, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा एप्रिहेंशन हो तो भी आई हैव टू जस्ट कीप
0: गिविंग,
1: बिकॉज नाउ द टाइम मैं वो पॉजिटिव एनर्जी देता जाऊं, द अदर पर्सन इज रेडी।
0: वंडरफुल सिस्टर शिवानी। इनफैक्ट जो इतने सारे हमारे पास मेल्स आए, आज भी हमने कई सारी समस्याएं ली। एक बात हम, क्योंकि वक्त नहीं है, खत्म करें कि ये जो पूरा राजयोग का, ये जो पूरी हमारी जो ये जो ज्ञान है, तो उसमें हर सवाल आप तक नहीं पहुंच सकता या हम पूरा नहीं इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते। क्या ऐसा किया जाए कि अपने सवालों के जवाब हमें खुद भी मिलने शुरू करें?
1: अपने सभी सवालों के जवाब हमारे पास अपने पास ही है, क्योंकि उसकी जो बॉटम लाइन प्रॉब्लम है वो हमें पता होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करना पड़ेगा। और उसमें सिंपल सिर्फ यही है, जब तक औरों को ब्लेम कर रहे थे तब वो बिल्कुल दिखेगा नहीं, जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा कि एकदम से मुझे जड़ से पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हर सिचुएशन में, एंड दैट मीन्स एवरी सिचुएशन, लेट इट बी एनी सिचुएशन, एवरी सिचुएशन, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या इसमें वेयर डिड आई गो रॉन्ग, नॉट यू वेंट रॉन्ग। जैसे यू वेंट रॉन्ग, फोकस इज चेंज। तो फोकस इतना इंटरनलाइज होता जाएगा, इसी को बोलते हैं लुकिंग इनवर्ड्स। जो आज दिन तक हम सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुक इनवर्ड्स, तो लुक इनवर्ड्स इज नॉट के क्या देखूं, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें और अपना रोल देखना शुरू करें, अपना पर्सपेक्टिव देखना शुरू करें और कहां मेरे पर्सपेक्टिव में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत क्लियर दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
0: बहुत सुंदर आपने बात की शिवानी, और यही वक्त है कि हम विराम लें, लेकिन आपसे ये कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्यार हमें मिल रहा है और सवालों के जवाब हम खुद भी मिलकर तलाश सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शांति।
0: जरूरत इसी बात की है कि खुद को पहचानने के बाद अब जब हम अवेयर हो गए हैं, जब हम समझ रहे हैं कि हमारी ये मुश्किल हो सकती है, फिर जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदारी हम खुद उठा लें, क्योंकि ये बात हमें राबिन करनी है कि कोई और नहीं बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी ना तो कोई दूसरा व्यक्ति बदलेगा। अगर हम अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो बदलना हमें खुद ही होगा। कहाँ बदलना है, कैसे बदलना है, क्या बदलना है, ये भी हम अपने इंट्रोस्पेक्शन में जाकर, अंदर जाकर अपने आप को पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई अभी भी ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और सजेशन है प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें ईमेल कीजिए या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3445 9999 3446 9873 666 555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा सफर है जिसमें हम लगातार चल रहे हैं। आप भी इस सफर का हिस्सा हैं, इस पूरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, ये सफर यूं ही चलता रहेगा। अब वक्त है कि थोड़ा सा विराम लें, लेकिन आने वाली कड़ियों में फिर मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत, ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें 0999 993 555 0999 993 666 0987 3 666 555। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के सभी कार्यक्रम अब BCDs पर भी उपलब्ध हैं। 10 BCDs के एक सेट की कीमत ₹300 है। अपने सेट का ऑर्डर भेजने के लिए आप ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट या चेक ओम शांति सोसाइटी के नाम पर इस पते पर भेजें। ओम शांति सोसाइटी 355 तरुण एनक्लेव आउटर रिंग रोड पीतमपुरा दिल्ली 34। फोन 0987 3 666 555। आप अपना नाम, पता, फोन नंबर और किस वक्ता की VCD ऑर्डर करना चाहते हैं ये लिखकर अवश्य भेजें। डिमांड ड्राफ्ट या चेक और आपके ऑर्डर से संबंधित बाकी जानकारी प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर आपको VCD का सेट मिल जाएगा।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हम दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स सैंडविच भी तुहारी सेवा विच।

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
3: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: खेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: 哎呀！
1: यार तू इत्थे नीचे ती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हाँ जी, मैं हूँ इक्का और आप मुझे सुन रहे हैं।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
3: हांजी रेडियो।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
1: देखो सच बता दो,
2: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
0: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
3: इतिहास जो सानू जदों जदों